0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet.
2: रूदी खुराक है,
1: आत्मा दी आवाज है,
2: कुदरत दा वरदान है
1: और प्यार दी जुबान है।
2: जिंदगी जिंदगी
1: जिंदगी प्यार है,
2: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
1: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
2: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
3: कल्चर ऑफ पंजाब।
2: कल्चर ऑफ पंजाब।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद.
1: व्हाट इज लाइफ? जब ये सवाल पूछा एक 18 साल के यंग जेंटलमैन से तो जवाब आया कि जिंदगी कोई पार्किंग स्पेस नहीं, रेसिंग ट्रैक है. सो जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड डोंट लेट योर फेलियर स्टॉप यू. Well, isn't that a very positive, very optimistic approach? इसलिए किसी और से नहीं, खुद से वादा करें कि ये सब rejections, failures आपको रोक नहीं पाएंगे बढ़ने से. ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है.

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: जब हम किसी कामयाब इंसान की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें सरफेस पर ऊपरी तह पर सिर्फ उनकी सक्सेस नजर आती है। उनकी मंजिल कामयाबी का वो सफर जो उन्होंने तय किया, जिसका हिस्सा मायूसियां और नाकामयाबियां भी थी, वो नहीं देख पाते। एजे क्रॉनिन का नॉवल द स्टार्स लुक डाउन आज एक क्लासिक नॉवल माना जाता है, पर आपको पता है कि 22 बार इस नॉवल को रिजेक्ट किया गया। पब्लिशर्स ने 22 बार इसे छापने से मना कर दिया था। अब जरा सोचें कि अगर पहली बार ही रिजेक्ट होने पर एजे क्रॉनिन ने हार मान ली होती, तो क्या वो कभी अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाते।

0: ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: आजकल का ट्रेंड ये है कि हम हर काम में इजी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज ही गलत है हमारी। फॉर एग्जाम्पल

रिश्तों में वक्त और प्यार की बजाय हम पैसे और गिफ्ट देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम देने से तो आसान लगता है कि जाएं और बीवी बच्चों को महंगे गिफ्ट खरीदें और ये प्रूव कर दें कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, पर ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। वेल, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू डू देन? वेल, आई विल डेफिनेटली शेयर आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर। स्टे ट्यून्ड टू 106.3 FM शो। आपका अपना है कल्चर ऑफ पंजाब, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दातला।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करने में ही भूल कर ली तो फिर वक्त और लाइफ दोनों वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों का माइंड बस घूमता रहता है अराउंड 3 P's, पैसा, पावर एंड पोजेशंस। इनसे ऊपर उठकर सोच पाना उनके लिए शायद नामुमकिन है, पर ये सच्चाई नहीं है। और यकीन माने, जब ये भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब स्टेज ऐसी आ जाती है कि ना तो गया वक्त हाथ आता है और ना आगे कुछ नजर आता है।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: अच्छा हर कोई आजकल कहता सुनाई देता है कि कंपटीशन का युग है, यू गॉट टू फाइट एंड कम्पीट एट एवरी स्टेप. पर मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जीतना तो बेहद आसान है. जी हाँ, बट हैरान नहीं हूँ, आई गिव अ रीजन एज टू व्हाई. वेल, बिकॉज आई बिलीव कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है देन वॉक एन एक्स्ट्रा माइल. उस एक्स्ट्रा माइल में तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जितना सोचें कि आपको पे किया जाता है, उस पे में आप थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा लगन के साथ काम करने को तैयार हैं, एंड आई एम श्योर 99% लोग तैयार नहीं हैं. अब सोचें कि अगर आप तैयार हैं तो आपका कंपटीशन तो सिर्फ उस 1% के ही साथ है ना. सो कंपटीशन कहाँ रहा फिर? वेल, दिस वर्जन, दिस पर्सपेक्टिव, डजंट दैट साउंड वेरी सिंपल एंड बेटर नाउ?

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कामयाबी कोई ऐसे ही गिफ्ट में मिलने वाली चीज नहीं है. इसके लिए तो बहुत सारी तैयारी और कैरेक्टर चाहिए. बिना शक हम में से हर कोई जीतना चाहता है, पर असलियत में जरा अपने आसपास नजर घुमाएं, गिन कर देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस जीत की तैयारी में हिस्सा लेते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं. बहुत कम, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेहनत में कम और किस्मत में ज्यादा यकीन रखते हैं. बट हेनरी फोर्ड की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट.

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: There's a wonderful book titled Charming the Brain May Allow Changes by Dale Doughton. इस किताब की खूबी ये है कि इसमें थोड़ा अलग स्टाइल में लाइफ को जीने के लिए कहा गया है। अब देखें ना, न्यू ईयर पर हम सब रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ढेरों प्रॉमिसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस साल मुझे हर हालात में वेट लूज करना है या अच्छे ग्रेड्स लेकर पास होना है। पर इस किताब में कहा है कि नए एक्सपेरिमेंट्स में जो मजा है वो वही पुरानी बोरिंग रेजोल्यूशंस में नहीं। बिकॉज़ समटाइम्स इट्स गुड टू फॉरगेट द कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एंड इंस्टेड फॉल इन लव विद योर करियर, फॉल इन लव विद योर वर्क।

है कि जिंदगी एक लंबी सी कहानी के लिए बहुत छोटी है, इसलिए एक छोटी सी बात यह है कि कंप्यूटर की तरह ही जो बातें आप अपने दिमाग में फीड करेंगे, स्टोर करेंगे, रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। अब देखे ना, मेरे किसी अपने ने मुझे हर्ट किया, दैट डजंट मीन दैट एवरीबॉडी अराउंड मी इज बैड। आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि दैट्स ओनली वन पर्सन, आई एम लवेबल एंड आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ लविंग पीपल इन माई लाइफ हु विल नेवर हर्ट मी। वेल, दैट्स द बेस्ट वे टू सी द थिंग्स अराउंड यू, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: एह सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

फिसल ही रहा है हाथ से, पर उसके साथ साथ जो एक और चीज जा रही है वो है रिश्ते। आज हर खुशी है लोगों के दामन में, पर हंसी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दोस्तों के नाम तो भरे पड़े हैं मोबाइल्स में, पर सिर्फ दोस्ती के लिए ही वक्त नहीं। सच माने तो पैसों की इस दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं हम कि थकने तक के लिए वक्त नहीं। आज पराए जज्बातों की, एहसासों की क्या कद्र करेंगे जब खुद अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं।